टक टक टक टक टक टक टक रे हो यति का दिन गयो बसेर के भयो काम गर्ने दिन सबै भाई हिँड़